0: World Inco festivity offer of a pound host 1 वर्ष को 200 Mbps internet and net TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set up box मात्र रु 1200 प्रति महीना में सर्तहरु लागू होने छन् छिटो बनेकै World Inc.
1: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.

0: समिच्यो चौदा के में बोधे लोटी पर दी रो बैंगे ने विवरण पी विषय मुई खातर खै हमरो
1: खै खै बहु कोई लोटर बढ़ दिलवा
2: आंगी समझो लोटी पर दियो छामता ही गुदी
1: बढ़ दिया बढ़ दिवा लोटर खाले पर दिम बा सहीली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक बाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनन होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबई बनी वित्तीय संस्थे कोई पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
3: सतर्कता ना छंदिप से क्या बचना
2: सिद्धार्थ बैंक क्या रे जन हितरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई
5: बिहे त आँटियो बाबु गरगहनाको लागि पो कहाँ जाने होला
6: गहना चाहिँ एकदम राम्रो अनि आधुनिक डिजाइनको बनाउनु पर्छ है दाइ
7: दाजुभाइको के को गफगाफ हुँदैछ
5: के हुनु नि बिहे त आँटियो गरगहनाको लागि कता जाने होला भनेको नि बहिनी
7: ल त्यसको लागि त चिन्तै लिन पर्दैन नि विगत 2034 सालदेखि तपाईँको विश्वासका साथ सेवा दिँदै आएको पुरानो अनि भरपर्दो एकमात्र पसल पशुपति सुनचाँदी पसल छँदैछ नि त्यही जानुपर्छ
5: पशुपति सुनचाँदी पसल कहाँ छ नि यो
7: यो त हाम्रै तमौली बजारको ब्यास 2 सफा सडकमा छ नि त्यहाँ त हामीले अर्डर गरे बमोजिमका आधुनिक डिजाइनका सुन चाँदी हिराको आकर्षक गहना तयार गरिनुका साथै थोक तथा खुद्रा मूल्यमा खरिद बिक्री पनि गरिन्छ साथै चाँदीका कलात्मक थाल कचौरा कलश करुवा गिलास

World Inco festivity offer of a pound host, 1 वर्ष को 200 Mbps internet TV, साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box, मात्र रूप 12 से प्रति महीना में, शर्तहरू लागू होने चाहिए। छिटो बने गई World Inco।